0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिलेर इठ कबु झनै फटाका आज इठ का कना हो बाबा फिर उस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नि हेरत
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर आई रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कई ठो कबु पेंसिल हेरा कई ठो कबु झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटास गुर झोला आन लाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हेरा थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनंद झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुंगी
1: लिया लिया मैं अभी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन् त बाउ के पाउँछ त्यहाँ
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
5: ए एभ्रीलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
6: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
3: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ
7: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
8: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
7: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484-46673 र 98-14-68-02-04
10: विश्राम पछि खोज खबरमा पुनः स्वागत छ अब पालो जनआवाजको थारू समुदायमा बिहिबार राति दर खाएर शुरू भएको अष्टमीकी पर्व हिजो सकिएको छ आजको जनआवाजमा हामीले अष्टमीकी कसरी मनाउनु भयो भनी केही नागरिकलाई सोधेका छौं
11: तर खासै जुन पहिला रमाइलो के साथ हामी उल्लासकै साथ मनाइयो आफ्नो खासै रमाइलो गरी नि मनाइयो आफ्नो परम्परा अनुसार वर्ष सर्त बैठेहरू हुन्छन् त भयो भनेर हाम्रो यहाँ नै मिलो ओसिन गाधी कारण यात्रा पीड़ितबाट हाम्रा ठाउँमा नि हाम्रा ठाउँ श्रमिकबाट नि त्यो ठाउँमा दुःख पाएन पुरै गाउँ पिडमनाबा मन कसैको खुसी पहिलो गाउँमा न जुन चहल पहल सबै अक्कर छ सिक्न उच्चारण ऊला नै हो गाउँमा न जस्त दाइसे लेखे भौजीसे लेखे काकीसे लेखे नन्दिया सबै बैठ नि त वर्ष ऊ हेरा गेल का जुन डान्से युवा हासक लड्काबाट आफ्नो रहर लेखे बाट बैठ वर्ष हो जाके यस्तो साथी अरू हस्तान्तरण गरिकन ऊ हिसाब लेखे जस्त पहिला त कलप कलप रह युवा कलप रह कलप कलप के लड्का सकुन समेत के बैठक गराएको अतिकति समुदाय ऐना जस्तै हाम्रा यी पुस्ता यी बीच त हाम्रो ऐना पुस्तामा हस्तान्तरण गरेको छ हाम्रो यी संस्कृति होइन हाम्रो बचाइ सिद्धि कना रहना संस्कृति हागी पहिला राग भर सिद्धि हागी गेना अनि जाके कान जगेना कैसे कना रीति रह नि त पहिला जुन असिन्ति गीत गाए यी पुस्ता मात्र निजन
12: राम प्यारे चौधरी टिकापुर एक वन गाउँ जिस्टापुरा ई साल के अस्तिम की तीक ठीक रहल नेपाल के माहौल देखना तो खासी रमाइलो नहीं अब बहुत कामदार रसुआ म पल बात रूम मैं निकाल नेपाल के चोक में डूबल जस्त भे कन्हैया जगह ना कहीं दान दान गीत नहीं गईली समयमा त अब रिसी

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर ओस्ट पाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगला दीदी कटरस गोर झोला आन लाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौला अवसर। अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही भदौ 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
4: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477417।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके बिहानिक 9 बजे थारू भाषा खोज खबर मपनौकन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनौ क्राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्दी रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से कुछ दिन थेसे कर्णाली लद्या में जल सतह बढ़ती तर कालिक तुलना में आज जल सतह घटल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम आज देश के कुछ ठाव में भारी वर्षा के संभावना सतर्क रह नागरिक मौसमविद के आग्रह सीटीबीटी में सुधार के मांग करती देशभर के विद्यार्थी आंदोलित व सुदूरपश्चिम कैलाली कंचनपुर से 4 लाख बढ़ी के अवैध सामान पकड़ गेल कर्णाली लद्यामा जल सतह बढ़ती गेल बा पाछक 3 दिन इहर लद्या के जल सतह 8 मीटर से ऊपर जैती रहल बा आज बिहान का 5:50 में जल सतह 8 मीटर 44 सेन्टीमीटर पुगल बा ई कालिक दिनक तुलना मन घटल बा काल दिन का 4:40 मन जल सतह 8.95 मीटर पुगल रह जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार चीसापानी स्थित कर्णाली लद्यामन पानी बाढ़ी तह 10 मीटर पुग्नाह चेतावनी तह व 10.80 मीटर पुग्नाह खतरा के तह मानजैत आज देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल बा हाल मनसून के न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान से उत्तर हो रहल बा अब देशभर साधारणतया बद्री लागल बा कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के डांचे ठाव मना हल्का थेसे मध्यम वर्षा हुईती रहल बा आज दिन क देशभर साधारणतया बद्री लग्ना बा देश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाव तथा पहाड़ी भूभाग के ढ्यू ठाव मना मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा व हिमपात के संभावना रहल बा लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के ढ्यू ठाव मन कोशी बागमती व गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाव तथा मध्य प्रदेश के कुछ ठाव मन मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा कलसे लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी व तराई भूभाग के 1-2 ठाव में भारी वर्षा के संभावना बा आज रात कफे लुम्बिनी प्रदेश व कर्णाली प्रदेश के कर्णाली प्रदेश और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाव मन मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा हिमपात के संभावना बा लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाव में मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा कैलाली व कंचनपुर से 4 लाख बढ़ी के अवैध सामान पकड़ गिल बा कैलाली में भारत से भंसार छली कई का अवैध रूप में लानगिल करीब 4,15,000 रूपया बराबर के विभिन्न सामान प्रहरी पकड़ बा जिला के विभिन्न ठाव से शनिवार के रात के जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली तथा माताहत के प्रहरी टोली बेवारी से अवस्था में रहलक सामान फैला पार्कन नियंत्रण में लेलक हो प्रहरी के अनुसार बरामद सामान मन चीनी मिठाई टाई बेल्ट कस्मेटिक लगायत के सामान रहल बा

0: पकरकिलक सामानकै अन्दाजी मूल्य 4,14,882 रूपियाँ रहलक प्रहरीसे जनागिल्बा। वस्तक कञ्चनपुरकी कृष्णपुर नगरपालिका 5 नहर रोड से अवैध रूपमा भारत से भन्सार छलीकर्क लनलक अन्दाजी मूल्य 32,700 बराबर के सुर्ती शनिबार रात का इलाका प्रहरी कार्यालय गुलहरिया कञ्चनपुर से खटगिलक प्रहरी टोली बेवारी से अवस्थामन फेला पार का आवश्यक प्रक्रिया पूरा कई का नियंत्रण में लेलबा। प्रदेश के इहे भदौ 10 गते भोटेकोशी व त्रिशूली लड्यामा अहिलक बाढ़ीसे ऊ क्षेत्रमा 7,500 घरधुरी प्रभावित हुइलक देखगिल्बा। दूरत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन अन्तर्गत करगिलक प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार करिब 7,570 घरधुरी प्रभावित होकन करिब 32,933 जना प्रभावित हुइलक सरकार जनैलबा। वस्तक 48 सरकारी कार्यालय प्रभावित हुइलक। 55 किलोमीटर सड़क 37 थो मोटर चलना पुल तथा 68 थो झुलुंगे पुल में क्षति पुगलक सरकार भोटेकोशी संबंधी अद्यावधि करलक विवरण में उल्लेख बा। वस्तक करीब 1,806 हेक्टर कृषि जमीन 13 थो जल विद्युत आयोजना 1 थो सौर्य ऊर्जा आयोजना ओ 2 थो प्रसारण लाइन मफे क्षति पुगलबा। मूल्यांकन अनुसार 783 मेगावट जल विद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित हुइलबा। हालसम्म 13,098 जनाके उद्धार करगिलबा। कलशे उही मन 300 से फे ढ्यूर विदेशी नागरिक रहलबाट। अपर त्रिशूली 3 ए सुरुङसे परौं 2 ठो नेपाली नागरिक ओ अपर त्रिशूली 1 सुरुङसे काल 1 ठो चिनिया नागरिक तथा बेत्रावती स्थित 1 ठो घर से 1 नेपाली नागरिक के जीवित उद्धार करगिलबा। करीब 5,000 जना आमिन बेपट्टा रहलबाट। कलशे उही मन 35 देश के करीब 600 जना विदेशी नागरिक रहलक मंत्रालय के विवरण में उल्लेख रहलबा। प्रभावित क्षेत्र से हालसम्म 1,344 ठो सप पकरगिलबा। कलशे राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपाली सेना नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल पूर्ण रूपमा परिचालित बाट। वस्तक विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी निकाय प्रदेश तथा स्थानीय तह ओ अन्य सम्बन्धित निकाय फे परिचालित रहलबाट। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद सिटी भिटीमन सुधार के माग करते विद्यार्थी उग्र काली ठेसे देशव्यापी आन्दोलन शुरू करलबाट। आन्दोलन अन्तर्गत टीकापुरके विद्यार्थी उग्र खड़क चोकमा प्रदर्शन करलबाट। विद्यार्थी उग्र सिटी भिटीके परीक्षा नतिजा शिक्षण प्रणाली तथा कलेजके अनुगमन लगायत समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार करपना माग धरलबाट। आन्दोलनरत विद्यार्थीके मुख्य माग मन मर्यादित ओ व्यावहारिक परीक्षा प्रणाली लागू करपना सेमिस्टर तथा वार्षिक परीक्षा निर्धारित समयमा सञ्चालन करपना परीक्षा सेकलक 1 महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन करपना रहलबा। वस्तक ब्याग लगलक परीक्षा 1 महिनाभित्र सञ्चालन करपना घरिघरि विद्यार्थी ब्याग लग्न समस्या रोकथाम करपना गुणस्तरीय तथा युक्त शिक्षा प्रदान करपना व अयोग्य शिक्षक परिवर्तन करपना विद्यार्थी उनके मागबा। विद्यार्थी उनका नियमित प्रैक्टिकल के व्यवस्था करपना समय में सही सूचना प्रकाशन करपना व परीक्षा में विद्यार्थी उनका देलक उत्तर पुष्टिका निष्पक्ष सही व सम्मानजनक ढंग से जांच करपना बटुलबाट। वस्तक इन्टर्नशिप हुन अनिवार्य तथा प्रभावकारी बनाइपना कलेज हुकन मन उचित अनुगमन करपना लगायतके मागफे विद्यार्थी उग्र आघ सर्लबाट। विद्यार्थी उग्र डिप्लोमा तह हुन प्लस टू सरह मन्ना हो। कलसे सम्मान व्यवहार र सम्मान अवसर देहपना माग समेत उठैदियलबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्दिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: यति छिटो आमा बन्न लागेको त
2: थाहा पाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकी सबै काम गर्नुपर्छ, कस्तो गाह्रो हुन्छ। पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन।
1: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट प्रदेश सरकारकै स्पष्ट नीति वा निजी क्षेत्रकै लगानी मार्फत सुदूरपश्चिम भन समृद्ध प्रदेशकै रूपमा विकास गर पना बटुलबाट धनगढ़ीमा आयोजित निजी क्षेत्र वा प्रदेश सरकारबीच बजेट सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नहाँ औद्योगिक क्षेत्रकै विकास वा रोजगारी सिर्जना प्रदेश सरकार आगामी बजेटमा न प्राथमिकताकेसँग सम्बोधन गर्ना बटुल खुइट। मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेशकै लाल किताब रकम वितरण गर्ना पुलिन्दा निहोक प्रदेशकै समृद्धिकै मार्गचित्र बनपना धारणा व्यक्त कलबाट मुख्यमन्त्री भट्ट सुशासन मन शून्य सहनशीलताकै नीति अवलम्बन गर्ती प्रदेश मन रहलक व्यतिथि ओ अनियमितता नियन्त्रण गर सरकार निर्मम होकन आग बर्ना बटुलबाट व्यतिथिकै विषयमा कौनोफे सम्झौता निकरमा नै कर्ना स्पष्ट प्रति वहाँ सुदूरपश्चिमकै विकास रूपान्तरणकै लाग्फे सक्कु पक्ष गम्भीर होक एकबद्धता रूपमा न आग बढ़पनामा जोड़ देलबाट। सरकार जोखिमयुक्त स्थानकै बसोबास सर्नाकै कानून बनेना हुइल्बा। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तयार पलक भूमि सम्बन्धी कुछ नेपाल एनह सम्बोधन गर बनलक विधेयकमा जोखिमयुक्त स्थानकै बस्ती सर्ना सम्बन्धी प्रावधान धैगिल्बा। लड्डे किना तालतलियाकै किना राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष वन क्षेत्र सड़कके मापदण्ड भित्तर वा अन्य जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास कर्तिरलक भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीमा अन्यन्त्र बसोबासकै व्यवस्था मिलाइ पर्ना वा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख बा। यी काम प्रस्तावित विधेयक एनमा रूपान्तरित हुइल पाछ हुइया हो। तयार विधेयक विधायन एन अनुसार सर्वसाधारणकै रायले सार्वजनिक करगिल्बा। वस्तकन यी विधेयक अनुसार भूमि प्रशासन सेवाहन स्थानीय तहमा विस्तार गर्दैनबा। रजिस्ट्रेशन लगायतकै काम स्थानीय तहसे सम्पादन करबेर सेवा गराइकै समय हो बचत खर्च बचत हुइना तथा सेवा प्रवाहमा सहजता आइना सरकारकै विश्वास रहलबा। प्रस्तुत विधेयकमा जग्गा नापजाँच एन 2019, भूमि सम्बन्धी एन 2021, गुठी संस्थान एन 2033, मालपोट एन 2034 हो भू उपयोग एन 2076 संशोधन गर्न व्यवस्था रहलबा। विधेयक अनुसार दलित ओ भूमिहीन सुकुम्बासी हन जग्गा उपलब्ध कराई तथा अव्यवस्थित बसोबासी हन व्यवस्थापन गर्न प्रयोजनकै लाग नेपाल सरकार केन्द्र ओ जिल्ला तहमन समिति वा कार्यदल गठन गर सकिया बा। समिति वा कार्यदल जग्गा उपलब्ध करैना प्रयोजनकै लाग भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी ओ अव्यवस्थित बसोबासी के पहिचान कैक लगत लेना जग्गा पहिचान कना स्थलगत अध्ययन करक जग्गा के लगत लेना ओ प्रमाण संकलन करक जग्गा उपलब्ध कराइसेक जैनाबा। समिति वा कार्यदल नेपाल सरकारकै निर्णय बमोजिम विगतमा गठन हुइलक विभिन्न आयोग वा कार्यदलसे वितरण कलक जग्गा हुकनके स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ठा वा नक्सा प्रमाणित लगायतके विषयमा देखगिलक समस्याके समेत समाधान गर्न कैगिल्बा। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट दार्चुलाकी अपि हिमाल गाउँपालिका एक भट्टार मन पहिरो के कारण उत्पन्न जोखिम कम करक लाग प्रदेश सरकार से कर सेकजिन आवश्यक पहल तथा सहयोग मन कमी हुई निदेना बटुलबाट। भट्टार क्षेत्रमा गैल पहिरो के कारण विस्थापित परिवार के राहत तथा पुनस्थापना के संग पहिरो जेना करम निरोग गिलक वर्षे जोखिम न्यूनीकरण व आवश्यक सहयोग के माग करती अपि हिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भगत सिंह ठेकड़े बोहरा ओ मार्मा गाउँपालिका के अध्यक्ष जमन सिंह धामी सहित के टोली मुख्यमन्त्री भट्ट हन शनिबार ज्ञापन पत्र बुझैलबाट। ज्ञापन पत्र बुझ्दी मुख्यमन्त्री भट्ट विपद के कारण प्रभावित नागरिक हन राहत उपलब्ध करैना के संग हुकन के पुनस्थापना के लागि प्रदेश सरकार से आवश्यक पहल कना बटुलबाट। वहाँ पहिरो के कारण प्रभावित तथा विस्थापित परिवार के राहत पुनर्स्थापना वा पहिरो रोकथाम के लाग प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्ना बटुलेबाट। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
5: हिन्दू महिलाहरूको महान चाढ़ हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छड्के तिलरी, रामलीला झुम्का, पिंजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
6: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली, संचालक देव बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
7: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
8: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू।
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
9: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: खोज खबर में फेरफेर स्वागत बा। कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी के टोली कटुआ पिस्टोल ओ चरेस पकड़ल बा। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी भुइयाँ फाटा से खटगिलक टोली कैलारी गाउँपालिका साथ स्थित पुरान भुइयाँ फाटा तीनकुने के सीमावर्ती क्षेत्र से एक थान कटुआ पिस्टोल ओ 1 किलो 50 ग्राम चरेस पक्रलक हो। सशस्त्र प्रहरी के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा गस्ती गर्न क्रममा व्यवहारी से अवस्थामा ऊ हतियारो लागू औषध फेला पल रह बरामद सामग्री आवश्यक अनुसन्धान तथा कार्यवाहीका लागि भदौ शनिबार सम्बन्धित निकाय बुझैलक सशस्त्र प्रहरी से जनागिल बा। कञ्चनपुर से लागू औषध सहित कैलाली के एक युवक पक्राउ परलबाट। कञ्चनपुर के बेलौरी नगरपालिका एक फटैया से अवैध लागू औषध ब्राउन सुगर 590 मिलीग्राम सहित कैलाली के धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 3 बोडाडारी बैठना 23 वर्षीय नितेश राणा पक्राउ परला फिट। राणा प्रहरी चौकी फटैया कञ्चनपुर से खटगिलक प्रहरी शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश 01012P7070 नम्बर के मोटरसाइकिल में सवार वहां उक्त पदार्थ सहित फेला पार्कना पकड़ाउ करलक जनागिल बा। यी सम्बन्धी प्रहरी आवश्यक अनुसन्धान करती रहल बा। यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। कुछ दिन थेसे कर्णाली लदेम जल सतह बहर्ती तर कालिकटुल नामना आज जल सतह खटल। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम, आज देश के कुछ ठाउँ में भारी वर्षा के संभावना, सतर्क रह नागरिक, मौसमविद के आग्रह। सीटीबीटी में सुधार के मांग करती देशभर के विद्यार्थी आंदोलित ओ सुदूरपश्चिम कैलाली और कंचनपुर से 4 लाख बढ़ी के अवैध सामान पकड़ गये। लीता बक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 5 बजे खबर संक्षेप सुन सकिए। अब खोज खबर से दीपेन्द्र भट्टराई जान धन्यवाद देती। मई गीताफे विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि। राम राम।
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
11: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
10: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खट्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
11: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार
10: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।

0: काफे कबुका पिएर इठ कबु पेन्सिल रेठ कबु झलै फटाका आजिठ काकना हो बाबा फे ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झला आनल से त लड़का सामान निहर
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरैठी रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत्गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: बहनी घर में बट्टी को सामान चाहिए थी कहाँ बाट किन्ने होला
4: किन टाड़ा जानु दीदी जमारा पारी पेट्रोल पंप अगाड़ी न्यू ओम बिजुली भंडार सप्लायर छ नि त्यहाँ घर तथा पसल का लागि चाहिने विभिन्न विद्युतीय सामानहरु पाइन्छन्
3: ए हो र त्यहाँ कस्तो कस्तो सामान पाइन्छन्
4: बल्ब होल्डर स्विच तार बोर्ड प्लग एलईडी लाइट पंखा लगायत का आवश्यकता अनुसार का विभिन्न विद्युतीय सामग्री पाइनु का साथ ही पुरानो सामान मरमत पनि गरिन्छ
3: त्यसो भए अब बिजुली का सामान किन्न अन्त कतै जानै परेन
4: हो नि तपाईलाई पनि घर कार्यालय वा पसल का लागि बिजुली का सामान चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्
3: न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर्स जमरापारी पेट्रोल पंप अगाड़ी संचालक राम बहादुर चंद संपर्क नंबर 98-48-59-67-33 र 98-51-18-82-46
5: छिछी कस्तो गनाएको इनका सन्तानले टोयलेट गनाएरै मार्ने भए
6: फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो के गर्ने होला घरमा पुरुष पनि छैन
7: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको कोही चाहिँदैन फोन गरेपछि तुरुन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा छँदैछ नि
5: कता छ त त्यो
7: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न तुरुन्त आइहाल्छ नि
5: फोन नम्बर कति हो भाइ
7: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97-620-20300 हो अर्को पनि छ 98-65-69-20-26
8: तपाईको पनि टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सप्पी राजापुर गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला संचालक शेरबहादुर थारू सम्पर्क नम्बर 97-620-20300 र 98-656-92-026
9: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बुका पी रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटा का आजी था, कहा कना हो बाबा फिर होस्ट बाटिन गटिलो ठाउ से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं है रहे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिये रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
7: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में।
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
7: समस्याहरू, किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
8: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
7: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
7: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
8: ईसीजी सेवा,
7: डिजिटल एक्सरे सेवा
8: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
7: फोन नम्बर 9844827359 र 9848423359। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
9: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
10: न्यू अछाम जालपादेवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टीकापुर कैलाली, सञ्चालक दुर्बा सुनार।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनो कन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकर अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हमारो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका में पशु चौपाया में लफी स्क्रीन रोग देखा पड़ल, पशुधनीय सतर्कता अपनाए पशु सेवा शाखा टीकापुर के आग्रह। मुक्त हलिया के समस्या ठाई व न्यायचित रूपन समाधान करपना मुख्यमंत्री भट्ट के कहाई। ओ बेत्रावती मन 193 जना बेपट्टा, भटकिला घर में खोजी के प्रतीक्षा। आप खोज खबर विस्तार में टीकापुर नगरपालिका में घर पालुआ पशु चौपाय मन लफी स्क्रीन रोग देखा पर लागल बा। अब फाटाफुट रूप में लफी स्क्रीन रोग देखा पर लगलग मोर्चे पशु सेवा शाखा टीकापुर पशुधनी हुकन हन सतर्कता अपनाए आग्रह कलबा। टीकापुर नगरपालिका में पशु चौपाय में लफी स्क्रीन रोग देखा पर लगलग हो घर पशु घर पालुआ पशु चौपाया में फाटाफुट रूप में लफी स्क्रीन रोग देखा पर लगलग टीकापुर नगरपालिका के पशु सेवा शाखा से जानकारी देगिल बा। पैलक जस्ता महामारी के रूप में निभिले से फिर किसान हुक्र पल्लक खुश पशु चौपाया में लफी स्क्रीन देखा पर्तिरलक पशु सेवा शाखा टीकापुर के पशु स्वास्थ्य प्राविधिक दीपक बोहरा जानकारी दिल बाट। लफी स्क्रीन रोग देखा परल पाछ टीकापुर नगरपालिका ऊ रोग विरूद्ध के खोप लगैना काम फे करती रलक बटोलबा। नगरपालिका हां 2500 डोज खोप उपलब्ध हुईलक, उन जहां रोग देखा परल ऊह ठाव में खोप लगैना काम नगरपालिका करती रहलबा। पहल चरण में गौशाला मन रहलक 60 पशु चौपाय मन खोप लगा सेकलक, दर्ता हुईलक गाय भैंसी फम मन खोप लगैना काम हुईती रहलक। वाकर पाछ खोप बचल पाछ और जहां लगाई जैना योजना रहलक टीकापुर नगरपालिका के पशु स्वास्थ्य प्राविधिक बोहरा बटुलेबाट। अब लफी स्क्रीन रोग महामारी के रूप में देखा परलक उहर से या कर रोकथाम के लागि पशुधनी फिर सतर्कता अपनाए पर्ना डेगिल्वा। लफी स्क्रीन रोग बिराम्या पशुकन से स्वास्थ्य पशु चौपाय में सरना हुईला कुहर से पशु चौपाय चढ़ाईबेर वा एक ठाव से और ठाव में लै जाइबेर।

0: लफे टीकापुर क्षेत्र में न लफी स्क्रीन रोग महामारी के रूप में फैलकन धीर पशु धन में न छेटी हुई रह उह मारसे ई विषय में न पशु धनी हुक्र बेला में न सचेत हुई आवश्यक देखिल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट मुक्त हलिया के समस्या ठाई दिगो न्यायोचित रूप में समाधान करपना बटुले 18 मुक्त हलिया दिवस के अवसर में राष्ट्रीय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल आयोजना कलक मुक्त हलिया हुकन के दिगो व न्यायचित पुनस्थापना के सन्दर्भ में सरोकारवाला हुकन बीच प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रम में संबोधन करती मुख्यमंत्री भट्ट लम्बा समय थे से हलिया समस्या समाधान हुई निषेकलक दुख ठुलक बटुले प्रदेश सरकार वास्तविक पीड़ित मुक्त हलिया के माग प्रति गंभीर जवाबदेही रहलक उल्लेख करती वहां मुक्त हलिया के पीड़ा प्रति आपन पूर्ण ऐक्यबद्धता रहलक बटुले मुख्यमंत्री भट्ट लम्बा समय बीत स्याक बेरफे समस्या समाधान नै हुइसेकना कारण बारे गंभीर समीक्षा आवश्यक रहलक बटुले समस्या समाधान मन राज्य पक्ष वा सम्बन्धित संघ संस्था मध्य क्याका कमजोरी रहलकना विषय में समेत समीक्षा करकन स्पष्ट निष्कर्षमा पुगपना उहाँ के कहाइबा। समस्या समाधान के लागि विगत के समीक्षा करती कमजोरी पहचान कर परट उसे एक ठो निष्कर्ष निकारक मुक्त हलिया के समस्या समाधान उहाँ ठोस रूप में आग बढ़ परट उहाँ कलबाट। रसुआ के भोटी कोशी मन बाढ़ी ऐलक 12 दिन बीतल तर बेत्रावती मन बेपत्ता हुईलक नागरिक भेटाई स्याकल निमित बेत्रावती लाखे समिति के अध्यक्ष शशि डंगोल कौन टोल से कटरा मने बेपत्ता हुईलक एक तथ्यांक संकलन कटिरलक बटिल वहां के अनुसार बेत्रावती मन 6 टोल से 193 जना बेपट्टा आज 12 दिन बीतल बेपट्टा मन आपन आफन्त मुक्र अहिंकीकना आशय आस मन कहाली लाग्दो समय बीतीवा वहां कल भेटना आस कम हुईटी गैल से फे धीर जन कुश के सब बनाकर डहा संस्कार कलबाट आफन्त के स्मृति में कासक्रिया के काम फे हुईटी रहलवा वहां कल आज के दिन समय वहां बेत्रावती में हुईलक क्षति के रिपोर्ट तैयार पर्लबाट जौन रिपोर्ट उपलब्ध करैलबाट बेत्रावती बजार के आसपास के टोल अगिटार थेसे 7 विषे कैडली टार 9 विषे सम्म भारी मात्रा में धनजन के क्षति हुईलवा जमीन व घर तहरा कामै नै लग्ना कैकन भास गिल्वा कैके उहाँ कलबाट। कैलाली के अटरिया स्थित बस पार्क के स्थलगत अनुगमन करगिल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री ओम विक्रम भाट पूर्व मंत्री तथा नेकपा एमाले के नेता लेखराज भट्ट गोदावरी नगरपालिका के मेयर वीरेन्द्र भट्ट लगायत के टोली बस पार्क क्षेत्र के अनुगमन करलक हो। अनुगमन के क्रम में बस पार्क के हिलामी अवस्था अव्यवस्था व पूर्वाधार अभाव बारे जानकारी लेगिल बा। उह क्रम में मंत्री भाट अतरिया बस पार्क की समस्या समाधान के लग प्रदेश सरकार गंभीर रहलक बटुले वहां अतरिया बस पार्क न सुदूरपश्चिम के प्रमुख यातायात केन्द्र के रूप में विकास कर आवश्यक योजना व बजेट की व्यवस्था करना प्रतिबद्धता व्यक्त कलबाट। अतरिया बस पार्क सुदूरपश्चिम के केन्द्र हो। मंत्री भाट कल यहां के हिलामय अवस्था व पूर्वाधार अभाव के समस्या समाधान कर आवश्यक योजना बनाकन काम अगाड़ी बढ़ाई पड़ी या कर लाख प्रदेश सरकार के ओर से आवश्यक बजेट सुनिश्चित करना विषय में पहल करने बाटी। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछनी बाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
3: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
2: अब किन टाढा जानु, सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
3: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
2: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
3: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
2: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
3: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
1: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
3: सिर्जना सुन चाँदी पसल।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: टीकापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम संबंधी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाई हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
3: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना उत्तर फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
4: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
6: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
6: ECG सेवा,
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
6: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
5: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423359। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ सब मानसे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो झमेला। ये इंसानियत सबका मरेला, बूढ़े जवानी के पीछे पड़ेला, ठगी चोरी दिमाग चढ़ेला। यह

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: ओइ बहिनी, घरमा बत्ती को सामान चाहिएको थियो, कहाँबाट किन्ने होला?
4: किन टाढा जानु हो दिदी? जमारा पारी पेट्रोल पम्प अगाडि न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर छ नि, त्यहाँ घर तथा पसलका लागि चाहिने विभिन्न विद्युतीय सामानहरू पाइन्छन्।
3: ए हो र, त्यहाँ कस्तो कस्तो सामान पाइन्छन्?
4: बल्ब होल्डर स्विच तार बोर्ड प्लग एलईडी लाइट पंखा लगायतका आवश्यकता अनुसारका विभिन्न विद्युतीय सामग्री पाइनुका साथै पुरानो सामान मर्मत पनि गरिन्छ।
3: त्यसो भए अब बिजुलीका सामान किन्न अन्त कतै जानै परेन?
4: हो नि, तपाईँलाई पनि घर कार्यालय वा पसलका लागि बिजुलीका सामान चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्।
3: न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर्स जमरापारी पेट्रोल पम्प अगाडि संचालक राम बहादुर चन्द सम्पर्क नम्बर 98-48-59-67-33 र 98-51-18-82-46।